सो लंबी उम्र दी कामना, लोक गीत जिन्नी उम्र, लोक गीत कदी मरदे नहीं, एडी वड्डी उम्र दी कामना कर गया। चलो अगे रीस खान दे कोलों सितार दे उत्ते सितार दियां तारां कितना आवाज़ कर दियां, एक तर्ज सुन दिया।